कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ते पहल तू करनी है, प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहू हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहू को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहू कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ

दर्द दे तो हो कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देत हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कतहूं विचार अब विचार को विचारत हो कहूं निज नारक पर नारके नकेत हो कहूं बेदरीत काऊ ता स्यों बपरीत काऊ।

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kirt kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। He believes the mind and body are all his own. That's the cause of his coming and going. जिन दिया सो चित ना आवे, मोहे अंत लपटाना। He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपार। One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मिक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच ऐ वाहिगुरू तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

We are also included. Bin nava sab chor. तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। इतों तक असी कल विचारिया है, समझ लिया है कि नानक के घर केवल नाम, अगर नाम नहीं है तो असी चोर हाँ। जीवन च साडे असी सिर्फ वाहिगुरु दीआं वस्तुआं नूं चुराई जाने हाँ, कट्ठियां करी जाने हाँ, जो साडा अपना नहीं है उसनूं असी अपना कही जाने। तन साडा अपना नहीं, वाहिगुरु दा है, प्राणी जाने ये तन मेरा, वो अपना बनाई बैठा है, सारियां चीजां नूं अपनियां बनाई बैठा है। तो किसी भी वस्तु होवे बना ली जाए अपनी, वो चोरी नहीं होती तो और की होंदा है। किसी भी चीज नु संभाल के बह जाओ, कब्जा करके बह जाओ, तो फिर आखो ये मेरी है, तो वो चोरी हो गई। बिन नावे सब चोर, इतों तक असी सुने। अज दे कीर्तन दे विच जो दूसरा स्टेप है नाम नु समझण दे वास्ते, क्योंकि महाराज जी की बाणी दे विच नाम नाम नाम नाम बहुत दफा आंदा। पर साध सिंह जी सोचण वाली गल यह है कि किसदा नाम हुण ए पहलू आरंभ हुंदा है। इतना महाराज जी नाम का जिक्र करते हैं, सोचना पैंदा है किसदा नाम, क्योंकि नाम दे पिछे जां ते कोई ना कोई परसन हुंदा है, नाम दे पिछे जां कोई प्लेस हुंदी है, जां नाम दे पिछे कोई होर वस्तु हुंदी है, कोई ना कोई सबस्टेंस ते हुंदा है ना, जिसनूं असीं कोई ना कोई नाम दिंदे हां, जिसदा नाम नाम वाला, उसनूं असीं नामी आख सकते हां। नामी जिसदा के नाम है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच सिर्फ नाम दी ही गल नहीं करते, जिसका नाम है, जो नाम वाला है, जो नामी है, उसका भी जिक्र करते हैं। क्योंकि जे सानू कल्ला ही नाम मिल जाए पर जिसका ये नाम है वो ना मिले, तो फिर तो कुछ भी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, सानू भुख लगी हुई है, सानू खाण नू रोटी चाहिदी है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, निरा लफज रोटी दे नाल असी रज सकते हैं, जब तक जिस चीज का नाम रोटी है वह ना मिले। सो जिस चीज का नाम रोटी है, प्रशादा है, जे ओ ना मिले तो सानू रज नहीं आ सकता, तृप्ति नहीं आ सकती। तो गुरु महाराज जी ये बहुत गहराई दे नाल विचारन वाला नुक्ता है कि जिथे नाम का जिक्र करते हैं उथे जिसका नाम है, जो नाम वाला है, उसका भी जिक्र करते हैं। हुण बाणी दे विच शब्द देखो आंदे हन, तू, तेरा, तेरे, तेरियां, तुम, ए जो लफज हन ए ते किसे हस्ती नूं ही एड्रेस कीते जा सकते हन, यानी किसे कोई प्रेजेंट है जिसनूं असीं तू कहने हां। तो महाराज जी की बाणी दे विच थां थां थां थां ते उस हस्ती नूं आख्या है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता। इसका भाव कोई बींग है, कोई होंद है, कोई एग्जिस्टेंस है जिसनूं महाराज जी तू कह के एड्रेस कर रहे हैं। नथिंगनेस नूं तो तू नहीं ना कहा जा सकता। तो गुरु महाराज जी दे पास मेरे कहने का मतलब यह है, नाम है पर जिसका नाम है उस दे नाल महाराज जी का संबंध है, जिसका नाम है उस दे नाल संबंध है। इसे कर

करके जिसका नाम है जो नाम वाला है महाराज जी एड्रेस करते हैं उसने, कहते हैं नाम तेरो आरती मजन मुरारे, कहते हैं खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम उस प्यारी हस्ती नू उस नाम वाले नू कहते हैं कि तेरा नाम बहुत खूब है बहुत खूब है बहुत खूब है, खूब खूब खूब खूब खूब तेरा नाम बहुत खूब है। हुन कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई सामने ना होवे तो इंसान आकाश वाल भी देख के या हवा वाल भी देख के थोड़ो आखी जाएगा कि तेरा नाम बहुत खूब है। किसी दे नाल कोई कॉन्टैक्ट होएगा किसी दे नाल कोई रिलेशन होएगा कोई सामने प्रेजेंट होएगा उसे नु ही आख्या जा सकता है कि तेरा नाम बहुत खूब है। सो इस तो भाव ये निकलिया महाराज जी के पास जिसका नाम है वो नाम वाला भी महाराज जी के पास है, और जो नाम वाला महाराज जी के पास है ता महाराज जी का उस दे नाम दे नाल भी प्यार है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच अनेक थां उते आखदे हन तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए, कहिंदे वाहिगुरु तेरा नाम जड़ा है वो रतन है, कहिंदे हन नाम तेरा आधार मेरा, तेरा नाम जो है वो मेरा आधार है। सो पॉइंट समझने वाला ए है कि नाम दे पिछे कोई नाम वाला भी है, नाम दे पिछे कोई नामी भी है, नाम दे पिछे कोई अजिही शख्सियत भी है जिस दे नाम दी इतनी वड्डी तारीफ है। उस शख्सियत दे नाल महाराज जी दा प्यार है, उस शख्सियत दे नाल महाराज जी दा कितना प्यार है आओ उसनु सुनो। कहिंदे हन

तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरी सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले दे नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मुहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उस दा नाम प्यारा लगता है। सो एथों दो नुक्ते सिद्ध हुंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी दा अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है ते गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलानगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनु मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनु जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकता है ना। हुण असी महाराज जी तो आओ गुरबाणी चों पुछिए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह पवे? सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, ते असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे ते फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो मन ना लगे। जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं, तो सानू नाम जपन लग्यां नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। तीन घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दी सारियां ही चीजा प्यारियां लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिसके नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कह न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहते हैं तेरे अनेका तेरे च गुण हैं, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वह प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप से कई दफा कर्स करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है। What to do with it? We don't know. Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. पर महाराज जी आखदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करदे हन कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहंदे हन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नूं कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण सतसंग जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वह एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनु जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी नु उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भौ के हा काला जीव, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेमांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, यह है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ये ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलारियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिए है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखा है। ते महाराज जी आखते हैं उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहते ओ प्री दा प्रेम ही चाहिए है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बिन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है। साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मों रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलिशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं ते की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नु, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखते हैं जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहते ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ

अजवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे क्योंकि तो संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हैं, प्रेम रूप हुंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साड़ी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लभ सकता है, इसनों सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सह

बिन गुर प्रेम ना पाई है कहते गुरु तो बिना जो प्रेम वस्तु है ये नहीं प्राप्त हो सकती। तो सारी दुनिया के जितना भी आख्या जाता है ना कि मैं तेनू प्यार करता हाँ मैं तेनू प्यार करता हाँ इत आदि शब्द जो वरते जाते हैं ये सारे ही फेक हैं। कोई किसी नू प्यार नहीं करता क्योंकि जितनी देर तक वो प्यार अंदर पैदा ही नहीं होया। हाँ असी किसी ना किसी तो सानू कोई जरूरत पूरी हुंदी है उस जरूरत पूरी होण करके असी उस नू प्यार करते हैं। जो जरूरत पूरी ना होवे तो साडा प्यार बदल जाता है नफरत च बदल जाता है। सो साडा प्यार किसी ना किसी नीड दे उत्ते बेस्ड है वो नीड पूरी हुंदी है तो असी उस नीड नू प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार एक आत्मक अवस्था है प्यार एक स्टेट ऑफ माइंड है प्यार एक आत्मा दी एक क्वालिटी है प्यार एक आत्मा दी सुगंधी है प्यार एक आत्मा दा स्वभाव है। कहिंदे ओ गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हो सकता बिन गुर प्रेम ना लभई। अगे आखते हैं गुरमुख सच्ची आशकी ऐ लाइन कह के समाप्त कर रहा मैं। गुरमुख सच्ची आशकी सच्ची आशकी सच्चा प्यार जित प्रीतम सच्चा पाई है जिस प्यार दे नाल ओ सच्चे प्रीतम वाहिगुरु नू असी पा सकना है ते उसने सानू प्यारा लगना है ते उसका नाम सानू प्राप्त होना है। कहिंदे हन ओ आशकी जो है गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई है अनदिन रहे आनंद नानक सहज समाई है। कहिंदे जेड़ा प्यार पा के दिन रात ब्लिस दे विच रहना है सहज दे विच रहना है। कहिंदे हन सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाईए। सारे इस पंक्ति नू बोलो सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाईए सच्चा प्रेम प्यार गुरपूरे ते पाईए। सो अज दा कीर्तन इत्थे तक पहुंचा है कि सानू जरूरत है उस ही किस्म दी प्यार दी जिस किस्म दा महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है। महाराज जी का उस नाम वाले दे नाल प्यार है उस दे नाम दे नाल प्यार है क्योंकि जिस नाल प्यार होवे उसका नाम प्यारा लगता है उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किवें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे ते सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे उसका हर कर्म प्यारा लगे वो प्यार सानू किवें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल कि गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है जहर नू किस तरह निकालना है पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन पांच भूत सबल है देही इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन उत्थे प्यार कित्थे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले कोई उन्हां पत्थरां नू बाहर निकाले कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले पहला उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है गुरु महाराज जी कहते हैं वो सिर्फ गुरु ही कर सकता है अंदरली पहला सफाई फिर गुरु प्रेम का ही सागर है ते वो प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकता सकेगा। जब साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा उस मिलने च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा ते उसका नाम प्राप्त होएगा ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दी विचारां कल नू इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नू गा के जो कुछ कहा गया है इस नू याद रखने की कोशिश करनी ते कल नू समय से दर्शन देने। मेरे प्रीत मां हो जीवा नाम ते आए एक प्यार दी एक मॉडल है एक प्यार दी इंतहा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है ते मैं जीना हां वरना कहते मेरे तो जीना भी मैनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

0: अकाल मूर्त अजूनी साहब अंगुर प्रसाद आसामाला पहला वास लुकाना शोक भी महले पहले पहले के तुंगे असराजे
1: श्लोक मल्ला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ने दे दे की

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जननासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा।

सिकंदर को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पर

लेकिन जद के साडे धर्म दे विच ही सारा कीर्तन जो है वह साजां दे नाल ही कीता जांदा है। लेकिन गुरु साहब ने सानू यह समझाया है कि किते इन्हां साजां तक ही ना रह जाए, किते जो असल साज है जो जिंदगी नू ही साज बनना चाहिदा है, ऐसा ना होवे कि बाहरला साज ते तुसी बजांदे रहो लेकिन जिंदगी तुहाडी दुसुरी रहे। कोई इंसान बाहरले साजां नू ते सुर करना जानदा होवे लेकिन अपनी जिंदगी दे साज नू ओह सर ना कर सके ते हजूर कहिंदे हन बाहरले साज दा कोई भी फायदा नहीं। मैं अपनी जिंदगी दे विच बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन देखे हैं, बड़े बड़े तबला निवास देखे हैं, बड़े बड़े गवैये देखे हैं जिन्हां दे कोल संगीत दा, सुर दा, साजां दी मुहारत दा इतना वड्डा तन है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उन्हां दी जिंदगी इतनी ज्यादा बसुरी है जिसका के बयान नहीं किया जा सकता। उन्हां दी जिंदगी अंदरों इतनी पटकन दे विच है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तो साडी कीर्तन दी दुनिया दे विच भी बड़े बड़े कीर्तन दे माहर लोग हैं जिन्हां नूं गाना बहुत आंदा है, जिन्हां नूं साज बड़े अच्छे बजाने आंदे हैं, लेकिन उन्हां दी जिंदगी च ना कोई गायन है, ना उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई सुर है, ना उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई संगीत। म्यूजिक एंड मिजरी, गुरु साहब की कोशिश है कि अगर ते म्यूजिक बाहर बाहर ही रहा तो जिंदगी च मिजरी रहेगी, लेकिन अगर जिंदगी दे विच म्यूजिक आ गया, लाइफ इटसेल्फ अगर म्यूजिक बन जाए तो फिर मिजरी नहीं आ सकती। गुरु नानक साहब महाराज की कोशिश यह है कि साढ़े जीवन नु जो है वो संगीत बनाया जा सके। तो आओ इस लाइन नु बार बार गाया है, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे। ऐ प्रभु तेरा दास तेरा जन नृत्यकारी करता है, गुरसिख भी नृत्यकारी करते हैं, गुरसिख भी डांस करते हैं, लेकिन केड़ा डांस? अकाल पुरख वाहिगुरु की उस्तुति करना, उसने गुणा नु गाना, उसकी जो सारे साडे आले दुआले एक मिस्ट्री छाई पई है उस मिस्ट्री नू समझदिया होया, उस दे नाल जुड़दिया होया, उस दे विस्माद दे विच रहना। वेख विडान रहया विस्माद, ये तमाम इतना वड्डा पसारा अपने आले दुआले देख के उस प्रभु दी वाह वाह करनी, उस दी सिफत सलाह करनी, उस दे इना तमाम विस्मादा नू महसूस करदिया होया इस दी थ्रिल नू महसूस करना तेरे जन दे वास्ते असल डांस है। आओ प्यार दे नाल इस पंक्ति नू दफा होर गाइए।

0: मांस खाने करे निवास श्री विनायक सिंगल दाग दिनकर ब्राह्मण पूरे ना प्या योग सास पूरा व्यापार
1: सर्वधर्म का डेरा दूर नानक पूर रहा भरपूर मत्थे टिका तेर तोती कखाई हाथ भी व्यक्त का साई नील वस्त्र पैरों

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? ये सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवालों का

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उस पुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सा पुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा।

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदि की वरतों ना करनी। गरीब नूं अज कहिंदे इह पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कु कर्म कमावत, पाहल पी के कु कर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चों उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कु कर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ते गुरु के सिखो, साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज फरमा

आग मारू टिक हुई आत्मा विच अणख जाग उठती है, क्योंकि उत्थे केवल सच टिकिया हुंदा है। सच है निरभउ निरवैर, इसलिए स्वयं धर्म दृढ़ हुंदा है। अजेही आत्मा विच जुर्रत भर जांदी है, बेपरवाह हो जांदी है, कायरता नस जांदी है। ए है मारू दा प्रभाव, सुन कै सुध न रहे कायर की, जब बाजे धुन मारू। फिर मारू राग विच वैराग भावना दी भी प्रधानता होण करके इस नूं प्राणी दे चलाने समय गाउण दी भी प्रथा है। सो युद्धां समय अते चलाने समय इस राग नूं गाया जांदा है। एक पासे तां इस विच जोश है, दूजे पासे वैराग। जोश दी भावना विच भगत कबीर जी फरमांदे हन, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कभू ना छाड़ै खेत। एक ओ आत्मदर्शी सूरमे हन जिन्हां दे गगन नगर विच दमामे वजदे हन, अते माया तूती दी आवाज नहीं सुनदे। जीवदियां उन्हां नूं मरण दी सोझी हुंदी है, इस लई आत्मक पंथियां नूं आदेश है, पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। सारियां हालतां विच मारू गाव्यां ताही सफल है, जे शब्द अंदर है, जे पंच बहराई जित ले गए हैं।

के शब्द आराध्य है, नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया, नानक सफल मारू एह राग। मारू बड़ा प्रसिद्ध अते पुरातन राग है, इसनु कई नामा नाल पुकारिया जांदा है अते भिन्न भिन्न ढंगा नाल गाया जांदा है। सात संगत दे चरणा विच बेनती है कि जिवें श्री दरबार साहब विच अमृत वेले तो रात तक कीर्तन दियां अठ चौंके दी परंपरा है, जिन्हां विच श्री गुरु ग्रंथ साहब विचों 31 रागां विच उचारी अमृत बाणी दा कीर्तन निर्धारित रागां विच हुंदा है, उस तों सीध लैके गुरु बख्श कीर्तन दी मर्यादा नूं मुड़ प्रचलित करन लई ही अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन एक निमाणा यतन है। शुद्ध रागां दे सरूपां नूं सर्व प्रमाणित अते प्रमाणिक रूप देण लई राग निर्णायक कमेटी बनाई गई। विद्वानां ने शुद्ध रागां दी इकसारता अते सर्व प्रमाणित प्रचलन लई शुद्ध सरूपां नूं अंतम रूप दिता। यह पहला उद्यम है, इसलिए इस विच रहियां कमियां विचार द्वारा दूर कीतियां जा सकदियां हन। राग मारू दा जो पुरातन स्वरूप गाया जांदा सी लगभग अलोप हो चुका है, उसे स्वरूप नूं मुड़ प्रचलित करन लई जो पुरातन स्वरूप निश्चित कीता गया है उस विच दोनों धैवत दोनों निषाद अते दोनों मध्यम दा प्रयोग हुंदा है। आरोह विच ऋषभ नहीं लगदा, इस दा वादी स्वर गंधार अते समाधि निषाद है। गायन समा तीजा पहर असीं दलीप चंद्र बेदी जी दे अति धन्नवादी हां कि जिन्हां ने सानू मारू दा इह स्वरूप दस्या। इह ओह स्वरूप है जो पुरातन रागी रबाबी सिंह गाउंदे चले आए हन। हुण सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी पासों शब्द, मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम ज्वाइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम ज्वाइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre pajan kate jam phansa. Pagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag sorat, tal, choti tintal, 16 beats.

0: सगळ्या पावलके असले नानक निरपाव निरंकार सच एक पहला पहला
1: नानक निरपाव निरंकार और के श्री राम रुमाल के क्या कर कहानी है के जे बे चार के तहन चन से गुण पूरे ताल बाजारी बाजार मायकले बाजार

0: अनंत सकलेश्वर होए पुत्र जाई सिद्ध न होए लक्षण उद्धर मन का चाहो नानक जिन मन भाओ जिनो मन भाओ
1: पौड़ी नाव त्रा निरंकार है नाय ले नरक न जाइए ज्यो पण सब तिस्ता।

0: तो कैसे हो जानो, ये तो संयम दुख जाए
1: और सेम की तीसन तो कई जिनी सचो सजाया उन्हें मंदे पैर रखियो कर सुख धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदर ना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शी सी अगला नित वह कलिशवाया बड़ी आई